0: the boy that remembers his murder. This is the story of Titu Toran Singh.
1: Dr. Toran Singh, आपके केस को रिसर्च करने में मैंने बहुत घंटे गुजारे और मैंने 4 साल के टीटू की बहुत वीडियोस देखी हैं. अब मेरे सामने 40 साल का टीटू बैठा है ना, तो थोड़ा अजीब महसूस होता है. बट थैंक यू फॉर लेटिंग अस हैव दिस कॉन्वर्सेशन सर. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है, आपकी पहली मेमोरी क्या है, आपको याद है फर्स्ट मेमोरी यू हैव?
2: मेरे को अपने पुनर्जन्म के बारे में सारी चीजें याद हैं, और अब तो थोड़ा कम हो गया उसमें. जब मैं 5 या 6 साल का था तब सारी चीजें मेरे को अच्छी तरह याद थी, कोई दिक्कत.
1: सर ऐसा कोई पहली चीज क्या याद थी, या पहली चीज आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आपने बोला या उनके
2: पेरेंट्स से? जैसे मैं जब छोटा था 5 या 6 साल का, तो पेरेंट्स से बोला था जिस घर में रहते हैं आप वो घर मेरा नहीं है, और मेरे पास गाड़ी है आपके पास गाड़ी नहीं है. तो ऐसे ही मैं उसको रोज एक तरीके से झगड़ा कहता था कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ.
3: 其实他都讲得出，他说我所记得的都不是很多，但是他深信他小时候的自己是不会讲这些大话的，他也都觉得他自己当时记得的是真的。其实这位 Dr. Toran Singh 现在跟大家 update 一下，他在学术上真的不惹少的，他已经成为一位大学的助理教授。所以整个你说是不是什么商业炒作啊，中间有得到利益啊，或者他爸爸妈妈赚到的钱，其实是完全没有这些事发生的，大家都是普通人。而 Dr. Toran Singh 读书也都很厉害，所以他也都无需要靠这些新闻的炒作去造就说找利益或者逃利的。那这一方面对很多喜欢研究前世今生的人呢，也都觉得是一个很特别的 case 的。咁我哋下次再揾到多啲奇怪或者有趣嘅轮回故事，我哋会再同大家分享同跟进嘅。好啦，听完呢个故事之后呢，其实仲有一个小小嘅插曲，我冇讲到俾啲听众听，我讲咗俾所罗门王听嘅，就係呢一位 Dr. Mill 喺度跟进呢件事件嘅时候呢，佢自己同自己拗嘅，基本上佢係话可能係呢个細路 BB 喺佢成长嘅过程入面，佢听过佢个爸爸妈妈讨论过这一单谋杀案，所以呢就在这个小路仔 的潜意识里面就已经是自己作了一些故事，所以小路仔在成长的过程里面呢就成日其实是复述爸爸妈妈所讲过的东西。你觉得 make sense 这件事？
4: 我觉得有点牵强的，因为就算你说个爸曾经去过那里，又曾經在那裡聽過這個新聞，但他不會知道那麼多 detail， 他怎會知道他的小孩的乳名呢，又怎會知道他怎樣叫他老婆呢，這些不是在新聞裡說出來的嘛。
3: 沒錯，我們也有另一位就是我家人，他看了這個故事之後呢，他就說哇，這件事發生的時候到個小孩懂得說話已經是2年之後的事，那這個小孩怎會在2年之間在不識講嘢嘅期間就已經潛意識聽咗啊！佢要潛意識聽咗好多嘢嘅，又唔見佢講話自己係第二個國家嘅人，又唔見佢講話發生喺第二個地方，偏偏點解佢嘅潛意識就淨係識得儲呢一個古仔咧？咁你又講唔通喎個邏輯上面，
4: 完全講唔通，所以我覺得呢個嘅可能性好低。你不如如果係要鑑粗嚟嘅話，你不如話係因為嗰個死者嘅屋企人，他们很想将他们认为是他的了，是他是凶手的了，不过是没有证据的。那于是呢他们三安白做，夹了这一家人在这里做场大龙凤出来呢，就是为了要将那个他们很认定是凶手的人呢是缉捕归案。
3: 听了这个故事，甚至你上去 YouTube 看了这个独家访问之后，你会不会有第二些的解释呢？可以 WhatsApp 给我们14379801430，亦可以电邮俾我哋 ghost889@am1430.com。
4: 好啦，咁咧跟住嘅时间咧，我哋就会交俾萧文礼嘅零音乐差。